0: क्या बात बोला चिड़िया, मेरा दिल पिथर पिथर हो गया।
1: अयो मिम्मल का नेदो सरदा गारु बात प्राक्टिस अंते अंते अंते रही।

अयो कटिंग कटिंग कटिंग है पिन सर सावन में लग गई आग इधर मिका सिंह पाड़ी ना पाटे दी मिका सिंह वुडस्टॉक विल्ला अने ओके सिनेमा लोचने पाटे दी कनी दीन इंस्पिरेशन का दिस कुने मानम तेलुगुलो एकुगा भी ना पाटा यस चुपुल तो गुच्ची गुच्ची चंपके सर मैं बाड़ंग कटे मिक विन पिस्तम मेलू वेरंडी इनका इलान्टी पाटलिंग का विन पिस्तानू सर वेरंडी